पर हमेशा जीत तरमिया दी हुई है। अतरमिया दा हमेशा ही बुरा अंत होया है। ए शब्द भगत कबीर साहब जी दा उचारिया होया, जिदे विच भगत जी बयान करदे ने कि प्रहलाद भगत ने

अपना दुख भुल गई, सारा समा परमेश्वर का नाम जप के बतान लगी। ए जो नाम जपदी है परमेश्वर दिया कथा कहानियां सुन दी है, ओदा असर एदे गर्भ विच है, पोस्ते हो रहे है। क्योंकि कहंदे ने जो मां खावे ओदा असर बच्चे ते हुंदा है, ते जैसी मां दी बिरती होवे जहो जिहा सुने ओहो जिहा असर होण वाले बच्चे ते हुंदा।

बड़ा उग्र कठिन तप कीता। दूसरे पासे नारद मुनि दे आश्रम क्यादो ने एक बच्चे नु जन्म दिता, जिस बच्चे दा नाम प्रहलाद रखिया गया, जिसनु आपां सारे प्रहलाद भगत करके याद करते हैं। उधर हरनाकश की तपस्या पूरी हुई, भगवान ने प्रत्यक्ष प्रगट हो

पैदा होया है वो मेरा भगत है। प्रहलाद ने अपने पिता का नाम जपना नहीं, ए घर विच लड़ाई शुरू हो जानी ते हौली हौली ऐसे घर की लड़ाई ने हरनाक्ष का नाश करा देना है ते दुनिया नू हरनाक्ष दे मरण दे नाल ही

पानी विच डोब के मार दियो। छपाइया ने प्रहलाद नूं फड़िया, हाथ पैर बन के उची पहाड़ी ते लै गए। बड़ी डूंगी नदी जिन्हों देख के भी डर लगता सी, छोटे जे बच्चे प्रहलाद नूं चुक के नदी विच सुट दिता।

प्रहलाद किनारे दे लग गया। हरनागश नु पता लगा कि मेरा लड़का प्रहलाद डुबिया नहीं। समझ ना आई हाले भी कि जिदी रखिया परमेश्वर करे उन्हु कौन मार सकदा है। पर फिर प्रहलाद नु बुला लिया ते गुस्से नाल कहा, तू राम नाम जपना बंद कर, मेरा नाम जप, नहीं ते अग विच साड़ के मार देंगा।

जे तेन अपने रब दे भरोसा है। इस तत्ते थम जफी मार जेड़ा अग दी तरह सड़दा पे ते नाले हरनाकश ने तलवार खिंच ली। दस मैनू

प्रहलाद डोल गया। सत्ता थम देख के ते भगवान ने कीड़ी दा रूप धार के थम ते तुरना शुरू कर दिता। पर बाणी कहंदी कि प्रहलाद डोलिया नहीं, क्योंकि भगत कदी डोलदे नहीं।

धरती भी है ना आकाश से ना तो पानी भी थे ना सुखे थे ना मेरे हाथ विच कोई हथियार है। जद सारे वर परमेश्वर ने गनाए ते नाले के आ देख ले ना मैं औरत हां ना आदमी। सारे वर पूरे अद्धा शरीर आदमी दा है अद्धा शरीर शेर दा है। जदू हर नाग ने कहा हां भगवान जिन्ने वर मैं मंगे सन सारे पूरे ने। परमेश्वर बड़ा बेअंत है गुरु हमेशा चेले कोलो एक गुण वध रखदा है। की पता है चेला कदू हंकार विच आ के ते मुकाबले ते बह जावे ते जेड़ा चेला मुकाबले ते बैठे

भगत कबीर सब नाल भी होया है। हिंदुस्तान दा बादशाह सिकंदर लोधी उसनु पता लगा कि कबीर मुसलमान है, पर मुसलमान हो के ए राम राम करता है। कुछ लोका ने कान भरे, सिकंदर लोधी ने भगत कबीर नु अपने दरबार च बुलाया। भगत कबीर साहब बनारस विच रहा करदे सन। सिकंदर लोधी दे सामने होए सिकंदर लोधी ने कहा, ऐ कबीर तू मुसलमान है, तू सुन्नत नहीं कराई, सुन्नत करा ते राम राम छड़। कबीर साहब ने कहा, ऐ बादशाह परमेश्वर एक है, ओदे नाम कई नहीं, किसे नाम नाल भी उन्हों याद कर लो।

ते मन भी ओदा मजबूत है जेड़ा नाम नाल जुड़े है जेड़ा गुरु नाल जुड़े है। हाथ पैर ते बजे सन एक वड़ा सारा पत्थर कबीर साहब दे पेट नाल बन के इन्हां सिपाहियां ने कबीर

के नाम तो बिना छुटकारा नहीं, नाम तो बिना कोई बाह नहीं फड़न वाला, नाम तो बिना कोई वस्तु नाद नहीं जान वाली। इसलिए हे कलगियां वाले पातशाह, हे दुष्ट दमन दाता, हे महान तपस्वी, हे मुकुंद निवासी सतगुरु, सानू जोड़ लै नाम दे नाल, सास ग्रास तेरा सिमरन करके, श्वास सफले करके, मुख उजला करके तेरे चरणा विच जाई। जो गुरु के लाल श्री हेमकुंड साहब श्रद्धा और भावना दे नाल नाम जपदिया सेवा सिमरन परपकार करदिया जांदे हन, इस रस दा इस स्वाद दा उन्हां नूं ही पता है। निरंकार आप ही अपनी शक्ति बख्श के ऐसे कठिन रस्ते तो आप सहायता करके ले जांदा, औखी घाटी बिखड़ा पेंडा मेरे अंग संग होए सहायक, जो सिमरन करदिया उथे पहुंचते हैं भाई, उन्हां दे चेहरियां दे रंग भी तब्दील होंदे हन। कोई नाम दा नूर चढ़िया हुंदा, नाम दी लाली हुंदी है उन्हां दे मस्तक। ते फिर जी करदा है कि होर जपां, जप जप के समा बितावां, इसलिए ए अरदास करदे हन।

गिद्धड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक

लड़न की समर्था रखन लग पे। ए गुरु जी ने मौजजा दिखाया, करिश्मा दिखाया, ए खंडे बाटे दी पौहल दे के ऐसी रूह फूक दिती कि मौत का कोई डर नहीं, किसी जरवाने का कोई

जे कोई मुसलमान नहीं बनदा उसनू मौत दे घाट उतार दी। ए दुखी होए सहायता लैण वास्ते आए, बेनती करन आए ने कि साडी रख

सिर तां कटवा दिता, पर उसका हाथ फड़िया सी जेड़ा, वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पूंज सके। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

धर्म की रक्षा करके विखाई। तो गुरु दसम पातशाह ने धर्म की रक्षा वास्ते, हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते।

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता, जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

विकसित होया। भारतीय संगीत विच इस राग दा किते भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। माझ राग भारतीय संगीत नूं गुरु साहिबान दी अनुपम देन है। आत्मिक सफर तय कर दी माझ विचों लंघदी आत्मा हूक कढ़दी है, हेक लगाउंदी है, विछोड़े दी कसक महसूस करदी होई मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलब करे चात्र की न्याई दा विरलाप करदी है। गुरु अर्जन देव जी दा 12वां भी इसे राग विच है। निरोल पंजाब दा राग होण करके इस विच भगतां दी बाणी नहीं है। इस राग विच दोनों गंधार अते दोनों निषाद लगदे हन, बाकी सारे शुद्ध स्वर लगदे हन। इस दा वादी रे संवादी पा है, गायन समा शाम दा संधि प्रकाश मन्या है। लो हुण सरवण करो माझ राग विच दो शब्दां दा गायन। पहला शब्द गुरु अर्जन देव महाराज जी दी रचना है अते कीर्तन कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, अते दूजा शब्द जिसनु गायन कर रहे हैं प्रोफेसर हरचंद सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा प्राता। पहला शब्द पेश कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी।

पावन वाणी का कीर्तन आप जी सुन रहे हो। कुछ चुनवे शब्द मैं थोड़ी सेवा पढ़ ले हाजिर होया। गुरु गोविंद सिंह जी दस रहे कि मेरा नाम गोविंद सिंह है और मैं शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्रों का पुजारी है। मेरा जो वाहिगुरु है वो शस्त्र है और शस्त्र तो बिना मैनू होर किसी का आसरा नहीं। इसलिए मैनू यह भरोसा है जिसके कोल शस्त्र है और जिस दा शस्त्र के उत्ते पूरा कंट्रोल है, यानी पूरी आराधना जिसकी शस्त्र में, उसकी कदे भी हार नहीं हो सकती। आज तू ही जग वीर, तू ही निशानी जीत की। ये जो शस्त्र है, जो शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्र का पुजारी है, शस्त्र की जो पूजा करता है और शस्त्र नूं चलाउणा जानता है, उसकी जंग विच हार नहीं हो सकती और सदा ही अकाल पुरख की कृपा द्वारा उसकी हर मैदान फतेह होती है। यह गुरु गोबिंद सिंह का मुख बात। और नाल उन्होंने एक गल होर दसी, उन्होंने कहा मैं सिंघा नूं पंज प्रकार की रहत दिती है ते रहत दे नाल पंज शस्त्र भी दिते हैं। वो रहत की है और शस्त्र की ने, उन्होंने मुख बात बाणी तुसीं श्रवण करो। गुरु साहिब कहिंदे

शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब निजा, तफंग तीरो तफंग बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धड़क धार अणियर घनसबान और उसके तीर जड़े ने अणियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जड़े दूसरे तीर ने ना वो वज जाना ते मुड़के कढ़े जा सकते ते आदमी बच सकता, पर अणियर तीर जड़े ने वो बाहर नहीं आओगे, जदों एक बार अंदर धस जाना जदों खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लै आऊंगी, उसदियां दो कड़ियां होंदियां एवं मुड़िया हुई, एक सीधी होंगी तो दो एवं मुड़िया होंगी, सीधी के अंदर चली जाती तो बाहर आने लगे, दूजिया जड़िया ने नाल फिर कहिंदियां हुण आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी, इसलिए जे मेरिया भैन कोल कि होंगे ना शस्त्र दिल्ली, यह हाल नहीं सी होना जोड़ा होया, पता की हाल है, सरदार साहब होनी शीशगंज साहब दर्शन करने लिए आ रहे, उन्होंने सरदार ने पूछे मोटरसाइकिल पर बैठे हुए, उन्होंने नहीं पता कि अज यह भाड़ा वर्तना है, डांग दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के ते वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई सी, एक ने सरिया मारिया सरदार जी के सिर ते वो थले डिग पे, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वह जिद सिगरट पीते होंगे एवं करके वह दाड़ी भी सिखा चट फूकते थे, वो नाल उन्हें अग लाती उत्थे सड़न बह गए, जिहड़ी बीबी जी सीगे वह बेचारे बड़े मायूस घबरा गए, भजन की कोशिश पर दुष्टा को कितने भजना, कौन ना तो तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क तार अलियर ना कबंद कोरड़ा, तो कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए सी ते जाके हुण वीसीआर वेखना सी, यह कोल सी ते बाकी कुछ नहीं सी, जा गहने पाए सी उन्हां दुष्टा ने, एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क दे विच शरेआम बेइज्जतियां कीतियां, उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धीआं नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरीं जाके छड के बाइज्जत तौर ते छड के ते आउंदे सी, उन्हां दुष्टा ने यह नहीं सोचिया कि भाई इन्हां ने कभी साडे ते उपकार कीते, ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लांगे जरा हुण कर ली, यह नहीं सोचिया गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण तिलक लाया होया जंगू पाया होया ते बहुत रोंदा होया करलाउंदा आया, कहिंदा महाराज मैं बच्चा व्याह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए, गुरु गोबिंद सिंह साहब एम सिंह सजे सी, उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुसीं उठो अपने साहबजादे नूं कहो उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हां कोल एड्रैस लै लो और उस देवी नूं हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित दे घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड के आओ, उन्हां पंडितां ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगिया करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती कीती जो मेरे को कहीं नहीं जाती, लेकिन मैं कहना कि सिंगो ए पांच शस्त्र रखो, धड़क धार अणियर ऐसे तीर रखो जो बाहर आने लगे नाल ही अंदर, कमंद कोरड़ा, कमंद कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हुंदा है, ये सरिये लैके आउंदे सी ना मारन, वह सरिया लैके जो आवे कमंद कोरड़ा ऐ भुआ के सरिये ते मारीदा, वह फिर ऐ वल पा के सरिये नूं काबू कर लैंदा, खिच के सरी अगले का अपने हाथ फड़ लेता, उन्होंने मजाफे कर सकता एक ही सुटी का बस फिर बोरे जो दिया, इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो, ये तुसी प्रण करके जाओ शस्त्र के धार नहीं बनना है, डरना नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक खंडे का अमृत छकाया, खंडे का अमृत क्यों छकाया जी, कृपान का भी शिकार सकते होर भी किसी चीज खंडे का, खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं, मौत खंडा, खंडे का अर्थ है मौत, तो महाराज ने उन्हू पानी घोल के सिख न प्याता, मौत घोल के सिख पी गया, सिख गुरु का सिंह मौत घोल के पी गया, तो दुष्ट कहता मैं तेन वेख लूंगा मार दूंगा, तो सिंह आता
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਏਕਲ ਰਹੂ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

बिना शस्त्र के संग नर भेट जानो, बिना शस्त्र के संग नर भेट जानो। गुरु गोबिंद सिंह का विभाग है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानूं भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानूं सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा है? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानूं दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की। 4,000 ते आया इधर फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया। ते जेड़े सी ना उन्होंने खिलारे हुए बंदूक लैके वह भज गए, जेड़े दुष्टों की फौज सी वह भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्होंने पिस्तौल ते उन्होंने रात ही खोले से डंडे इन्होंने हाथ फड़ाते, डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े। असं डे सा कीर्तन कर बाबे नहीं साढ़े, राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डे जपण। उन्हें सिखा आ कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप किते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे साड़ देना, धीआं तुहाडियां खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दिती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दिता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने प्यारे खालसा जी, मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो। मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वह इन्हों के नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ना हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच तुरंग सपच बनो करकार कृपान कम पावेंगे, निक्षे जिम केर पर्वते तसो दिवाले पावेंगे, फल पाल पयाए संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया निक्षे जिम केर पर्वते, केर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है वह जदों फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आउंदा है उन्हें फिर जो है ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। अगे की है सिंह बुकते, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर होवा। बाबे ने छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली, जकारे छड़ते भज पे भज के वह 5-7 पिछे बेचारे मेरे वर्गे वह भी मगन मगन भजी आने। जब उन्हें देखा गुस्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वह 4 लारियां से ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 5-7 गोडे टुट गए, है जी। जब भज उठे नाले ऐ देखने वाले भजन तो फिर एक उठे खलो गए, इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी मारते हैं, ना असी बुढ़े मारते हैं, ना असी बच्चे मारते हैं, ना असी भजदे मारते हैं, असी भजदे नहीं मारते। तुसी प्यो दे पुत्तों खड़ो जाओ, नहीं तो असी इधर जाने जड़े आ आते हैं उन्होंने छड़ के लाल किले वाल भज उठे, वो पहला ही अगे भज उठे, है जी। 12,000 दुष्ट ऐ सारे बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्होंने मैं सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4वें दीवान लगा रज गए होवोगे। श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह की कहने चंदनी बाबू।

सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस।

सब तो पहला रागां विच श्री राग जो के इस समय ही गाया जाता है। बाणी विच इसनू रागां विच सिर मोर मन्या है। रागां विच श्री राग है। ते शब्द भी श्री राग दा पहला शब्द है। मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। शब्द श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया। राहो दी तुक है, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देख्या अवर ना ही थाऊ। मैं एक बेनती करूंगा बच्चिया नू, जरा इना दी गल्ला दी आवाज जे इधर आएगी ता मन खिंडदा है। फिर सब तो पहला जपताल 10 मात्रा ते अंतरा 10 मात्रे दा ही सुलफाक विच, सुलफाक चलंत लय विच गाया जांदा है। अंतराय दा चलंत लय विच है ते अस्थाई ठा विच है।

કે એ વસ્તુ ઇસ વસ્તુનું કોઈ લે નથી, એને બદલે કે ખાણ ભૂખ નથી. મરદાન કાહી ચીર ફિરદા રહ્યા और इस वस्तु के लैन वाला कोई गाहक नहीं. हार के चरस के मरदाना खड़ा हो गया. सोच रहा है मार्क ने उठ के एडी वड्डी दात बख्शी, अर्ज के लैन वाला ही सोच कौन लगेगा. इसकी मरदाने में सामने तक आए तो अरायण बैठी जिसकी टोकरी गाजर के मूल्य. मरदाने ने सोचा चलो मैं इस अरायण में दे देंगे, कुछ खाण में दे देंगे, खा के अपने पेट में चुपका दिए थे, भुखना दुख दूर कर. मरदाना अरैण के कोल आके क्रोध मुठ खोली देके आ माई आ लवेगी, अरैण ने तकिया ते सिर फिर मैं इस पत्थर नु की करूं. पर ख्याल है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा, चलो ले लेनी है मेरे बच्चे पे खेलन. बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता कितनी कोशिश कर, बच्चों खिलौने लेके देते हैं, पैसे देते हैं, मिठाइयां देते हैं, साढ़े बच्चे खुश हो. बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता की कितनी कुर्बानी. अनो बच्चे हैं जो वड्डे होके माता पिता की खुशी है. माता पिता ने बच्चों की खुशी वास्ते कितनी वड्डी कामना की, पर वो बच्चा धन है जो माता पिता की शक्ति. बाबा आनंद सिंह जी महाराज पूर्ण महापुरुष

जिसे घर भी आए दर्शन करिए महापुरुष आए दर्शन किए प्रसाद भुगताया बड़ी खुशी दिखी।